अरे आप भी डरते हो क्या? आप किससे डरते हो? बकवासपन रूहे हवा के झोंके हैं, हमारे दिल के सुनहरे धोखे हैं। डरो मत, क्या समझे?

0: बोलो बच्चों अब क्या है?
1: अब हम नहीं डरते, हम तो शेर डरते।
0: शाबाश शाबाश, लाडलो सबके लाडलो, भागे ये भूत भी तुम जैसे शेर शेर है?